कीजिए। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय। श्री श्री अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव श्री देवेश्वर महादेव की जय। आराधि भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। सत सनातन धर्म की जय।

0: नारायण भगवान
1: की जय।
2: Next bhajan will be Shobhavu Sattasangari.

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम शांतिः शांतिः शांतिः ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषुते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषुते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, आप ट्रांसलेट करो।
1: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushita, Shraddhya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हम

0: ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही है.
1: So I will make a short translation because each of these titles of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Vaimaheshwaranandji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे.
1: And he thinks that this tapasya, this kind of sadhana will bring millions of people in the future.
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है.
1: In Indian tradition, there is a great importance of guru.
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं.
1: Shankaracharya ji says in his bhashya, in his commentaries.
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है.
1: If somebody is greater than God, then this is guru.
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है.
1: Nobody saw God.
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं.
1: And guru is in front of us.
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं.
1: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म.
1: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति.
1: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग.
1: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता.
1: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं. एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है.
1: There are two things important in human form. One is the intellect, which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है. ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है.
1: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है. इसी समय का हमें सदुपयोग करना है.
1: We got a very limited time and we have to do good in this time.
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहाँ वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति. जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा.
1: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं. जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
1: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwa Guruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर ईश्वर परमात्मा पर है वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए.
1: सो इन वेदस इज सेड दैट एज मच एज वी बिलीव इन गॉड द सेम अमाउंट ऑफ बिलीव वी शुड हैव टू आवर गुरु.
0: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है. परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज.
1: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
0: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं.
1: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
0: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा.
1: And because of that, you will be able to reach your destination, the final liberation, and you will be free.
0: Hari Om Tassat, Hari Om Tassat.
1: Short and sweet. Deep Narayan Bhagwan ki jai. Swami Atmanand ji Maharaj ki jai.
0: Swami Gyaneshwar Puri ji Maharaj ki jai.
1: This was, I think, it was like an introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here, in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little bit. 1-2 shlokas from Ishavasya Upanishad. As you remember, Ishavasya Upanishad is first Upanishad from its... It can be found in Yajurveda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishavasyamidam Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagatena Tyaktena Bhunjita Magridaha Kasya Svidhanam Kurvaneve Karmani Jiji Vishechatam Samaha Evam Tvai Nanyate Tostina Karma Lipyate Nare Asurya Namate Loka Andhena Tamasavritaha Tanste Pretyabhiga Chanti Yeke Chatmahano Janaha Aneja de kamana sojavio naina deva apnuvan purva marshat tadhavato anyena tieti tishta tasmina po matarishva dadati tadejati tanejati tadure tadvantike tadantarasya sarvasya tadu sarvasya se bahyataha yastu sarvani bhutani atmanyavanu pasyati sarvabhuteshu chatmanam tato na vijugupsate Yasmin sarvani bhutani atmaiva bhudvijadha vijatanataha tatra komoha kaha shokai katvamanupashyataha. So we reached till the 5th shloka, and I will just tell the short of the 6th and 7th shloka. Yastu sarvani bhutani atmanyevanupashyati. So Ishavasya Upanishad, first three mantras, it gave us the moral and ethical principles. Then it started to describe the God, Atma, or divine energy. So the person who sees all beings in itself, and he sees self in all beings, he cannot hate, because just by knowing that we are all one, that we cannot hate. So you see, this sentence you can find in almost every coaching or every self-help book, and this is like tens of thousands of years old wisdom. If you realize, the problem is in realization. Can we realize that? Yasmin sarvani bhutani. And when that person realizes oneself, what sorrow can touch it? This is that what our Acharyaji was telling about. This is the realization of human life, why we came on this planet. We have two things

गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहरं

विश्वेश्वरं मोहनं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लाशनी माधवी

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: उस पर पकड़ रखना,
1: you have to follow,
0: इसको धीरती बोलते हैं।
1: This is called धीरती,
0: क्षमा,
1: endurance, patience.
0: कोई छोटा आदमी अगर कोई गलती कर जाता है तो बड़े आदमी को उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: The third step is do not steal. Whatever money, things or something you have, they should not steal.
0: पवित्रता,
1: purity.
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं excuse me, voice, non-base, non-base.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मानी शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान, आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट, ड्रिंक, थिंक, लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोस, दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्व श्रुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyak Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhir vidya, buddhi, mind. Isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. थी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धीमनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure, and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: Hamare Vedon mein sarvapratham do baat ki shiksha di gayi hai, satyam vada, dharmam chara, satya bolo, dharma ka acharan karo.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: He's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत बम्बई सूरत रोड नाम हो गया और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन व्हिच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास
0: यम नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक यम यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम
1: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज कॉल्ड नियम
0: नियम यम अपने को रोकना
1: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वो नियम हो गया
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पास पालन करना उसको धारण करना उसको अपने जीवन में लागू करना
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ दिस इज कॉल्ड नियम
0: यम नियम के बाद में आसन है
1: After that is yes.
0: बॉडी को सेट करना बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम
1: so
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayama se aapke andar 5 ear hai. Wo 5 ear shuddh hoke aur theek se delivery service karti hai aapki body ke liye. सामान की मटेरियल की सामान की
1: सो लाइक द आसनस प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस फाइव प्राणस फाइव टाइप्स ऑफ एयर which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रतिहार आता है. प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है सॉल्ट एंड स्वीट. समझ गए? प्रतिहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रतिहार बोलते हैं.
1: सो प्रतिहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनास एंड प्राणायामस, व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी. But yama and yama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रतिहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na.
0: Baba Ramdev ji. Kaha? Aaja wo. Hamara chela hai wo. Unko pata hai sabko. To usme ye hai. Ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana, jo swayam ka judgment hai, swayam ki swikriti hai. स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. Oh, bhai.
1: So you look,
0: sanyas
1: what
0: lega?
1: Means dharana?
0: No dharana.
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my, the dolak person, if he wants to have sanyasa. So he said, no, thank you.
0: Humko ek vyakti ne kaha, aapne achha kiya, aapne apni 21 pidi पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. So, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नो नो नो नो नो.

0: प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है, वो ध्यान बिजनेस बन गया है.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग, 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me, and then I give you 5, 10, 20, 50, 100, or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का.
1: From all of this, you will take
0: 500. 500 का ठीक है ना?
2: 2000 का
0: बंद कर दिया मोदी ने यार. 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी? नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती है.
1: So you can do ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका, आपके जीवन में आपके बीवी, बच्चे, परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व तो आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता है, संसार होता है, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है.
1: There is a family.
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है. समाधि, हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था,
2: दिल्ली में.
0: हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल ओनली आप

0: आपका अपने पर ध्यान है उसको समाधि बोलते हैं.
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ.
0: हमारे विश्वगुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहाँ पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है और जहाँ की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि.
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God, aham brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9.
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening, so listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो only विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो. ये कीर्तन है.
1: Kirtan or remembering is that you remember only the words of Vishwa Guruji, nothing else.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं. ये स्मरण भक्ति है.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next.
0: Dasya, Sevak, Shishya, usko Dasya Bhakti kaha gaya hai.
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: Dash, apna istitva, apna mahatva, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई all of your egoism, and then you dedicate your life to the service of the Guru.
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है तो उस समय पर गॉड भगवान गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
1: Sakha Bhakti is the next step, is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: Hamare Sanatan Dharma Vedic Marg Bhakti Marg mein dheere dheere dheere dheere Arjun jab Krishna ke nazdik gaye to Bhagwan ne unko phir das ne rehne diya, sevak ne rehne diya, unko sakha bana diya, sakha mitra.
1: So like when Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: Iske baad mein atmanivedan bhakti aati hai. Bolo, Maharaj ji, ab main aapke saath hi kal subhere chala chalunga. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
1: आत्मनिवेदन is when you say I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
0: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए. वो क्या है? ज्ञान की भूमिका.
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
1: Seven books.
0: उसमें पहली books क्या है? सुविच्छा. क्या है भैया? सुविच्छा क्या है? बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना.
1: फर्स्ट बुक इज स्व इच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू.
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे. अच्छा अब बोलो गुरुजी.
1: गुरुजी
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
1: द सेकंड वन इज ओ गुरुजी आई थिंक द सेम लाइक यू एंड गुरुजी सेज ओके देन टेक संन्यास.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा.
0: उसको विचारणा बोलते हैं.
1: विचारणा मींस थिंकिंग. इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुस थॉट्स आर इक्वल, यू आर थिंकिंग लाइक योर गुरु.
0: तन मानसा. इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा. गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है. इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन.
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा. व्हेन द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल.
0: सत्वापत्ति. अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्. प्रथमा समुदायता विचारणा द्वितीय स्यात् तृतीय तन्वानुसा सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात् पंचमा संसात्मका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी त्रियगास्मृतम्। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसाइपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग।
0: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर।
0: पदार्थाभावनी का अर्थ यह है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: पदार्थ अभाव, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति। असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति।
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा।
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: Padartha bhavani, jahan sona, mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asanshakti kaha.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं। आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या नाम बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे?
1: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग,
0: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं। अच्छा। कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, नचैनम क्लेदंति आपो, न शोषयति मार। आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है, ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: So this is that book Padartha Bhav, there is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Turiya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, aur आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
1: And then afterwards is turiya avastha, the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract you at all.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवदि देव देवेश्वर महादेव की जय. इंदुदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय. राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय.

नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजी इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट देयर फॉर वेक अप रिमेंबर योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर धर्म दैट इज ह्यूमन लाइफ गॉड ऑलवेज इज देयर ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंस एवरीवेयर बट वी नीड टू फील एंड बी डिवोटी बी डिवाइन लाइफ सो दिस ग्लोरी ऑफ द गुरुदेव परंपरास योगीज ऋषिस एंड दे गाइडिंग अस प्रोटेक्टिंग अस एंड गिविंग ऑलवेज द डिवाइन पाथ टू अस सो वी आर वेरी हैप्पी वंस अगेन दैट वी आर हियर एंड वी आर थिंकिंग ऑलवेज टू विश गुरुजीज हेल्थ हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ विदाउट हेल्थ विदाउट गुड हेल्थ इज ऑल वेल्थ इज नॉट सो सो गुड फॉर ह्यूमन लाइफ सो हेल्थ इज नेसेसरी डे एंड नाइट वी आर ऑल डिवोटीज थिंकिंग अबाउट विश्व गुरुजीज हेल्थ एंड ही विश्व गुरुजी ऑल्सो थिंकिंग ऑल ऑफ अस एंड वी आर ऑल इन अंडर द वन ट्री एंड वी आर ऑल प्रेइंग अंडर डिवाइन अम्ब्रेला ऑफ माँ प्रभु जी दिस इज डिवाइन अम्ब्रेला भक्ति सागर द ओशन ऑफ द भक्ति द ओशन ऑफ द आवर भक्ति वॉट यू कॉल भक्ति दिस डिवाइन डिवाइन डिवाइन नेम ऑफ गॉड सो pray always to Vishwa Guruji's health and repeat mantra time to time physically mentally spiritually when you have time repeat mantra for Vishwa Guruji's health we are all here because of Vishwa Guruji we are all here because the holy guruji we are all here because our parampara rishis gave us guidance and protection so we all need to think to Vishwa Guruji's health and always repeat mantra pray to supreme cosmic light gurudev gave us the blessing and remove all disease and all disturbance which are there everywhere remove away and protect us so please sit comfortably we will sing three time om through the om we will pray to cosmic light to our parampara to give the protection and good health to Vishwa Guruji so we will sing three time om deep inhale bayo sidha bayo तीन बार ओम रो उच्चारण करो ला बाब जी रे स्वास्थ्य रे वास्ते तो सीधा बे पर आंखियो बंद करी परी न गहरो श्वास ले परो न यो ओम रो उच्चारण करो ला पो हाथे तीन बार देखो ठीक है प्लीज डीप इनहेल

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

भूचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

0: विराजत
1: ओम शलकुरुजी महादेव की
2: जय।
1: वादिदेव देवेश्वर महादेव
2: की जय।
1: श्रीदीप नारायण भगवान
2: की जय।
1: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान
2: की जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी योगराज
2: की जय।
1: नंदीश्वर भगवान
2: की जय।
1: शिव शंकर भोलेनाथ
2: की जय।
1: हनुमा पार्वती पते
2: हर हर महादेव।
3: भगवान